0: मेरो लागि माइलका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना जुहो बेला खेमरी दे गरम ओगोतरी जेऊ बेला सुनो फुरी कता ओचुगुरी जेऊ आउ बेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज संभावना चाहिए आउ ये दिने प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेत्र ज सक्षमना दे वातावरण मिले ने लख्यता असर किने रि उमूल र थाउने भुछे तामे वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज ताना दे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सके नि सुनो नाखार नामे ल भे लागिने सज जिनी किमी लापरवाही सुनो चासो खेलगेमा दुख जिन्दगी को ठेल मेला की नाते जन धनी ने खेपा छिपी ताऊ वो खोकाई
1: गेचो छानियाला पर्न मेला की ने पूरा रंगे नौ पूरा ले चौसो खेल गिरी
0: वन जंगल सर मेरा आज मेरी बानी एमएल एम ओ सछानियाला ली उसको कर पोतर राले पार बजे रहते
1: सलाई लाइटर सियाला ले सचांगे चीज राले जबांगजा रो यामा देने पोलो केने या इतो चीज र रहिते वन जंगल याले के बाबा या
0: पिकनिक वन भोज बाक ने सचांसु छिनी मेले चौसो सही देखि खनाले वन जंगल ले ओसो छामनी दैके बानी को चुरोद विधि ओरे बने को
1: लान्थर नाम्रो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि हालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चौसन गिरिए
0: गेचो छानेला खोरे ल चौसी पोलिए हरिदे तरिम गाई गेजो नेके लाइजु अब नजिरे बनाई गेम येल गेजो नेके नालाए औलेम लायो के नाइए
1: वन जंगल स जुलिसी उठेन बारी ल बाली नाली कुचुला चुली यात्रा र सताउसु छिनी ने चौसो सहिदे के खेले या
0: वन जंगल मेला कि गेमाइए लागि किनि पाँच जना खरनामार मिली दिएको नै सानो जन नै गेसै
1: बत्तास उचली जु बेला त हिजिनके कोटल मे के सताकीले हेनो खिम छिन्नि ने चासो गेसै
0: ने लागि नि निताई के मने के बसिए सुनो अरुले मने के बस या
1: के छ छामला पोयाल ने लागि कि सन्किनि के छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनछरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय ल खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: B&B Dental Clinic, Ghorahi 15, Tan.
1: मेरो लागि उमायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना जुङ बेला खेमरिदे गरम अवधि जेउ बेला सुनो फुरी कता अचुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्तक सम्भावना पाए आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेप्त जस खेम नादे वातावरण मिलेने लख्यता असर केने रि उमुल र थाउने भुछे तामे वायुमण्डल ल कार्बन मस्तक तानागे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेने सुन नाखार नामेल भे लागिने सज जिमी गिमी लापरवाही सुन चाउस खेलगेमा दुख जिनके कोठेल मेला की नाटी जन धने में खेता छिटी ताऊ हो होकाई
2: बिचो छानेला बल्ल मेला की ने पुरा रंगे नौ पुरा ले चाउस खेल गिरी
1: वन जंगल सज मेरा आज मेरी बारी एमएल एमए ओ छानेला ली उसोतर पोतर राले पार जगे रहते
2: सलाई लाइटर सियाला मे सचाउने चीज राले जबांगजा र यामा देने पोल गेले या इतो चीज र रहिदे वन जंगल याले के भाबाय
1: पिकनिक वन भोज बाको मे सचाउसु छिनि मेले चाउस सयदे कि खनाले वन जंगल ओसो छामि दैके बारीको चुरोट विधि ओरे बनै कोबा
2: लान्थार नाम्रो लिज्याउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने ढालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसर गिलुए
1: गेछो छानेला खोरेल चाउसी पोलिए हरिदे तरिम गाई गेज मेकेलाइजु अब नजिरे बनाए गेम यल गेज मेके नलाए अरूले लाइयो के नाइए
2: वन जंगल स जुडिसी हो घेङ बारी ल बाली नाली कुचिउला चिउली यात्रा हो चाउसो छिने ने चाउसो सहिरे के खेले
1: वन जंगल मेला दुखे माइए लागि किनि पाँचजना खरनामदार मिलिदिए भनै चानज मेघे सही
2: बतासु चिलिजु बेला त हिजिनके कोटल मेघे सताङ्गिने हेन अखिम छिन्ने ले चासो के सही
1: मे लागि नि निताई के मने के बसिए सुनो अरूले मने के बस या
2: के छ थामला पोयाल मे लागि किसन किनि के छोटा ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उनी कार्यालय ल खबर गिरिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: उखरी मौरी घाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालय र प्रदेश सभा भवन जाने बाटो लिएर सम्पर्क नम्बर 98578222275
1: प्रकाशक तथा व्यवस्थापक मानसिंह विश्वकर्मा रोल्पा समाचार साप्ताहिक एवं रोल्पा अफसेट प्रेस।